नमः। ओम श्री साई अपांतरात्मने नमः। ओम श्री साई अवतार मूर्तये नमः। ओम श्री साई सर्वभय निवारिणे नमः।

पिताई सत्य साई प्रेम साई चाहिए बाबा सत्य बाबा प्रेम बाबा चाहिए।

पांडुरंग विठला जय पुनर्नाथ विठला पांडुरंग विठला जय पुनर्नाथ विठला।